0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

राम करो सुती, अंते उधार ले लो मती, हर हरती का नाम चंद्रोधी, यारो नीलाम करो तुसी।

0: अभी देखो तमा सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती
1: आँख ना चुराओ
0: ना चुराओ रूठ कर
1: न जाओ आँख ना चुराओ
0: ना चुराओ रूठ कर न
1: जाओ ए न जाओ आँख ना चुराओ

0: मेरा मौसम नदी का किनारा हवा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: ऐसी धरनी को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के प्रदेश में, जी हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत का ये सुंदर प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में है विराट अरब सागर। आइए अब जानते हैं कुछ यहाँ के दिलचस्प इतिहास के बारे में। प्राचीन 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन, जो ईस्वी सन पूर्व 230 से 225 तक रहे, वे महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासन में ही मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई है। फिर इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला और धर्म सभी दिशाओं में अत्याधिक विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्ति चित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता आई। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का भी नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद याद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना राज्य दक्षिण में मदुराई तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। वह जो स्थान था वो पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और अहमदनगर के पास था। बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को समन्वित किया और शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ है और ये एक अलग पहचान के साथ उभर कर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया।

पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया, परंतु 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को हरा दिया था और ये प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गया था। फिर शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यही हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम। स्वतंत्रता के संग्राम की बात आ गई तो सुन लेते हैं एक

0: ऐसी धरनी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: और आप हो हमारे साथ महाराष्ट्र के सफर में। अब जानते हैं महाराष्ट्र की पहचान एक प्रदेश के रूप में कैसे हुई। शायद आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। अब ये दोनों राज्य मुंबई का हिस्सा थे। जब मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो यह करना आवश्यक है। किंतु देश के पहले वित्त मंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा भी दे दिया। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी भाषा के स्थानों का समीकरण करके एक राज्य बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला और 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र जो खानदेशी नाम से जाना जाता है तथा विदर्भ सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। महाराष्ट्र आपस के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है जो पहले 4 अलग अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के 5 जिले, मध्य प्रदेश के दक्षिण के 8 जिले तथा आसपास के ऐसी अनेक छोटी छोटी रियासतें शामिल थी जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई। महाराष्ट्र भारत के स्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्री पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर तथा इसके ढलान पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जबकि अजंता और सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती है। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा का पहरी है जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में है। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में। महाराष्ट्र में कई प्रकार की आकर्षक भूआकृतियां हैं। नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है राज्य की उत्तरी सीमा के एक हिस्से का निर्माण करती है और अरब सागर में ही मिलने वाली ताप्ती नदी की विभ्रंश घाटी इसकी उत्तरी सीमा के दूसरे हिस्से को चिन्हित करती है। ये दो नदी घाटियां सतपुड़ा श्रृंखला नामक उत्खंड से विभक्त होती है। ताप्ती घाटी के दक्षिण में अरब सागर के किनारे कोंकण का तटीय क्षेत्र है और जिसके पूर्व में पश्चिम घाट या सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से विख्यात गगार स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों की तराई कोंकण में अरब सागर से 6.4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती है। कोंकण का जो तटीय किनारा है संकरा है, इसके बीच बीच में सह्याद्री पहाड़ियों के पर्वतीय स्कंद है और क्षेत्र को कई पश्चिमवर्तीय द्रुतगामी नदियां प्रवाहित करती है। उत्तर में स्थित उल्लास इनमें सबसे बड़ी है। सह्याद्री पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में दीवार की तरह लगभग 640 किलोमीटर तक लगातार स्थित है लेकिन इसमें गुजरने वाले कई दर्रे तटीय भूमि और भीतरी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण सड़क और रेल संपर्क उपलब्ध कराते सह्याद्री की पूर्वी ढलान का उतार दक्कन के पठार की ओर क्रमिक जो पूर्व की ओर ढलान वाली गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी की घाटियों द्वारा निर्मित है और इन नदियों के अंत प्रवाह से महादेव, जनता, बालाघाट और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को आकार मिलता है। महाराष्ट्र में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां रुके हुए लावे से निर्मित है जिनकी मोटाई कई स्थानों पर 3050 मीटर है। कई पहाड़ियों में लावे के विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारण पठारी समतल जैसे ऊपरी हिस्से से युक्त सीढ़ीनुमा गगार की विशेष संरचनाएं बन गई है। अगर बात करें कृषि की, तो महाराष्ट्र के लगभग 65% श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर

निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, उड़द, चना और दलहन। ये राज्य खिलौनों का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये बात हुई राज्य के आर्थिक विकास की, पर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी देश या प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं महाराष्ट्र की शिक्षा के बारे में। यहाँ के शिक्षण संस्थान में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में जो है शिवाजी विश्वविद्यालय, मुंबई में सेंजिटी महिला विश्वविद्यालय, फिर मुंबई की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय जो रामटेक में है, और इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण की निगरानी और प्रायोजन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशालय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ अग्रणी अनुसंधान संस्थान भी हैं। ये संस्थान जल तथा विद्युत, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, परमाणु अनुसंधान आदि से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा के और भी अवसर कई अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं और वंडरफुल है यहाँ की संस्कृति, बहुत ही निराली। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। ये मराठी भाषा और मराठी साहित्य विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी और अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुलजापुर, पंढरपुर, नासिक और अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी और अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय मेले और त्योहार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अभी जो गणेश जी की यादें ताजा हो गई है तो क्यों नहीं हम सुने उनकी महिमा का ये गीत।

0: आंखों हमारे साथ।
1: ऐसी धरनी को नमन करता है पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: महाराष्ट्र के शहर पर मेरे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के नाम से अभिनय करना तो बहुत पुराना है। वैसे पूरे भारत के फिल्म उद्योग की जो शुरुआत है, इसका श्रेय दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर इनके जैसे अग्रणियों को जाता है। पुणे की जो प्रभात फिल्म कंपनी, उन्होंने संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जैसे मराठी कलाकार विशेष रूप से सफल रहे। मराठी साहित्य की ही तरफ महाराष्ट्र में संगीत की भी प्राचीन परंपरा रही है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसका मेल भारतीय संगीत से हुआ और आधुनिक काल में पंडित पलुस्कर और पंडित भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई दिशा दी। विलायत में हुसैन अल्लाह रखा इन जैसे अन्य वादकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे गायक इनको याद करते हैं। वे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिनिधित्व करते आए। महाराष्ट्र में कला की भी प्राचीन परंपरा रही है। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी के खिलौनों, चमड़े के सामान और मिट्टी के बर्तन, इनकी डिजाइनों की तरफ आप देखेंगे तो पता चलेगा महाराष्ट्र की कला भी बहुत ही वंडरफुल रही है। 1833 में स्थापित सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट कला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक संस्थान था और अब महाराष्ट्र के अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में कला संस्थान स्थापित है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया और पुणे जैसे बड़े नगरों में इनके प्रशिक्षण विद्यालय फल फूल रहे हैं। लावणी, ओवाड़ा माना रोमानी गीत और ओजस्वी नृत्य और तमाशा जैसी संगीत, नाटक व नृत्य से युक्त लोक कथाएं पुनर्जीवित हुई है। कला और फिल्म निदेशालय, साहित्य और संस्कृति बोर्ड राज्य सरकार की गहरी रुचि के परिचायक है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति का प्रभाव महाराष्ट्र से बाहर भी फैल रहा है। भूतपूर्व मराठा साम्राज्य की राजधानियां जैसे बड़ौदा, अभी वो वडोदरा के नाम से जानी जाती है, ग्वालियर और अन्य नगरों में महाराष्ट्र मंडल इसमें खास सक्रिय भूमिका निभा रही है। महाराष्ट्र की और विशेषता सुनने से पहले हम लता जी के इस मनभावन कंठ को भी सुन लेते हैं।

0: आपको हमारे साथ महाराष्ट्र के सैर पर।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रवास पर, महाराष्ट्र के सैर पर। महाराष्ट्र में देखने और घूमने के लिए कैसे स्थान है ये भी हम देखते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है खास अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, केनेरी गुफाएं, पितलखोरा, कार्ला गुफाएं, इनके बाद महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगनी, जवाहर, मालशीज घाट, अम्बोली, चिकलधारा और पन्नाला पर्वतीय स्थल। इसके अलावा यहाँ कई धार्मिक स्थान भी है, जैसे पंडरपुर है, नासिक है, शिरडी, नांदेड़, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपति पुले, भीमा शंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव आदि। ऐसे सुंदर स्थल और प्रकृति दोनों ही साथ महाराष्ट्र में, यथा हमारा और आपका महाराष्ट्र का सफर। अब आगे बढ़ते हैं एक मंजिल की ओर, 29 राज्य एक राष्ट्र एक आने।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: फिर मिलकर रहेंगे, लेकिन अंत में ऐसे महान राष्ट्र को दिल से सलाम करते हुए आपके खिदमत में।

شک

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे

0: डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज मशुकाना।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: खबरों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको सुनाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुनते हैं इस कार्यक्रम में। और आज जो हम लोग अक्षर अल्फाबेट लेकर आपको गाने सुनाते हैं तो आज का अल्फाबेट है एल। जी हाँ, एल अक्षर वाले सारे ही गाने आप इस एपिसोड में सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं हमारे साथ आज के खास मेहमान खाबों के सफर के विभा जी हैं। विभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्कार आपको और खाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार और आदर भरा नमस्कार।
1: जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। हमें खुशी हो रहा है कि आप भी इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। शुरुआत में एक 1959 की मैं बात करना चाहूंगा, काली टोपी लाल रुमाल इस एल्बम के बारे में, इस फिल्म के बारे में। ये एक फिल्म आई थी जो 1959 में रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म का एक एल अक्षर से शुरू होने वाला गाना है जैसे लागी छूटे ना, ये उस समय बहुत पॉपुलर था। हम लोग बचपन में रेडियो पे इस गाने को सुना करते थे।
2: मैं उसको बड़े प्यार से सुनती थी। मेरे फादर जब रेडियो ऑन करते थे तो वो पुराने गाने ही तब चला करते थे, तो ये गाना उस टाइम का बड़ा ही अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इसका भाव जो मुझे समझ में आता था कि ये जो लगन एक प्यार था, प्यारा सा रिश्ता जिससे लगन लगती है, तो गहराइयों तक जाती और उस गहराई को समझते हुए ये एक मन का डिफरेंट सा भाव उत्पन्न करती है। मुझे तो ऐसे दिल की गहराइयों तक छूने वाला ये गाना था। इसकी एक अपनी धूम और अपनी लगन, जैसे किसी के प्यार का रंग चढ़ने वाला, ये लगन की बात की जाती है इस गाने में।
1: विभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इस भाव को। आशा करता हूँ हमारे श्रोता इस भाव को समझ रहे होंगे और कभी अगर सुना होगा तो वो समझ ही रहे होंगे कि ये कौन सा भाव इस गाने के अंदर है। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे तारा हरीश जी और इस फिल्म के कलाकार थे शशिकला, चंद्रशेखर और कुमकुम। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी उस जमाने की और थोड़ा सा इस फिल्म में कॉमेडी जो है काफी अच्छी तरह से बताया गया था। और इसमें ये गाना जो है, अभी आपने जैसे कहा कि लागी छूटे ना, ये कहीं न कहीं दिल को छू जाने वाला, सबके भावों को एक्सप्रेस करने वाला गाना है जो हम लोग सुनकर इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आइए विभा जी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर लौट के आते हैं। और इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और लता जी और रफी साहब ने इसे आवाज दिया है। चित्रगुप्त जी ने बहुत ही खूबसूरत संगीत इसमें दिया है। काली टोपी लाल रुमाल 1959 का ये खूबसूरत गाना ख्वाबों के सफर में आपके लिए।
3: लागी इस रंग की पिया के संग की, कब छूटती है ये छाप, जो दिल की गहराइयों तक छुप जाती है जनाब, न दूरी का एहसास न किसी और के।

पास होने का, बस एक अपनी ही धुन, अपनी ही लगन, लगन उसके साथ लग जाने की, उसी का रंग चढ़ जाने की, रंग प्यार का, प्यार के नशे का, जो ले जाए मस्ती में, फिर ना रहे कुछ अपनी हस्ती में, लागी छूटे ना।

0: పథం నాగే చూపేనా సబ్ తోషణం.
1: नमस्कार, आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर और मैं हूं आपका हम सफर समी और मेरे साथ हैं आज के खास मेहमान खाबों के सफर के विभा जी. बहुत बहुत स्वागत है और कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और गाना सुन के तो और भी मजा आ रहा है.
1: जी, 1959 काली टोपी लाल रुमाल इस एल्बम का हमने गाना सुनाया हमारे श्रोताओं को. तो थोड़ा एक साल आगे चलते हैं, 1960 में ले चलता हूं मैं आपको. ये 1960 में फिल्म आई थी घूंघट, उस फिल्म का ये गाना है. जी
3: लागे ना मुरादिया,
2: ये गाना सुनते ही ऐसे लगता है जैसे रियली कोई उदासी और प्यार के भाव से मिक्स अपने प्रेमी को याद करते हुए ये कह रही है.

0: कि उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, जैसे गुम सी हूँ। ये उदासी के माहौल में लेके जाते हुए साथ में प्यार और बहुत गहराई वाला प्यार शो करता है, और ये भी दिल को कहीं दूर तक खींच के लेके जाता है कि किसी की विरह जो है वो समझ में आ रही है कि अपने प्रेमी से उसकी तड़प और उसका प्यार, प्यार कैसे एक प्रेमिका प्रेमी के प्यार को मिस कर रही है। ये एक विराग सा लेके आ रहा है गाने में, ऐसा महसूस होता है।
1: बहुत ही खूबसूरत भाव आपने प्रकट किया है। और इस फिल्म के कलाकार थे प्रदीप कुमार, आशा पारेख, बीना रॉय, भरत भूषण और लीला चिटनिस। प्रदीप कुमार का बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग इसमें रहा है और एक जेंटलमैन का रोल उन्होंने प्ले किया है, और साथ ही साथ अपने प्यार को बनाए रखने के लिए जो कश्मकश है, बीमारी में भी वो काम पे जाता है और काम करता है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, 1960 का घूंघट इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पूरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। शकील बदायूं साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, घूंघट इस एल्बम का लागे ना जिया मोरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं ले चलता हूं आगे की ओर। 1960 से 63 की ओर चलते हैं, जहां पर 63 में एक फिल्म आई थी, दिल ही तो है। जी हाँ, ये नाम भी बड़ा खूबसूरत था। विभा जी, आपने ये नाम सुना है क्या, दिल ही तो है इस फिल्म का नाम?
2: जी सुना है और देखी भी है, पर स्टोरी अच्छी तरह से याद नहीं है।
1: क्या बात है। जी जी।

0: जी, ये मेरे ख्याल से राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था
1: जी।
0: तो राज कपूर, नूतन प्राण और नाजिर हुसैन लीला चिटनेस इस फिल्म के कलाकार थे और राज कपूर साहब जो है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें उन्होंने रोल निभाया था। पीएल संतोष साहब ने इसे निर्देश किया था यानी डायरेक्ट किया था और रोशन साहब ने इसे संगीत दिया था और इसकी जो वेशभूषा जो थी उस समय बहुत कम इनसे फिल्मों में जो है वेशभूषा के लिए भी अलग से खर्चा किया जाता था तो इसमें वेशभूषा का जो डिजाइनर थे वो मानक थे। मानक ने इस फिल्म में जो भी ड्रेसिंग है उसको उन्होंने किया था उसमें काम। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म का एक जो गाना है एल अक्षर से शुरू होता है, अगर विभा जी आपने देखा है तो मैं चाहूंगा कि वो कौन सा गाना है जो एल अक्षर से इस फिल्म में शुरू होता है।
1: लागा चुनरी तो
0: या सही सही पहचाना आपने, मन्ना डे की आवाज में ये गाना है लागा चुनरी मेरा जी। बताइए इसके भाव।
1: इसके भाव जो मुझे समझ आ रहे थे उसमें है कि एक प्रेम का भाव है, जो प्रेमिका और प्रेम जो अपने उस भाव को ऐसे प्रकट कर रही है कि दुनिया उसको एक्सेप्ट करे ना करे लेकिन उसका अपना भाव है, जो दुनिया जिसको दाग समझ रही है वो इसमें प्यार की बात है कि दर्दी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक जमाने ने जिसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर उसके लिए तो ये पावन पवित्र और बड़ा एक खुशी देने वाला।
0: विभा जी बहुत ही अच्छे भाव आपने प्रकट किया कि यहाँ पर एक प्रेम की बात है, प्यार की बात है और लागा चुनरी में दागा ये गाना जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय भी, आज भी लोग सुनते हैं। तो कहीं न कहीं इस गीत को भले ही किस भाव से सुनते हैं या समझते हैं लेकिन कहीं न कहीं एक पकड़ है, एक अट्रैक्शन है इस गीत को सुनने के बाद। हर व्यक्ति एक बार तो जरूर इस लाइन को अपने मन से अपने ओटो से गुनगुनाता है, लागा चुनरी में दागा। ये रोशन साहब का म्यूजिक से सजा ये खूबसूरत गाना दिल ही तो है इस एल्बम से, मन्नाडे साहब की आवाज में शाहिद लुधियानवी साहब ने इस गाने को लिखा था बड़े प्यार से। तो आइए सुनते हैं इस गाने को 1963 का ये खूबसूरत नगमा आपके लिए ख्वाबों के सफर में।
2: दाग उस प्यार का जिसे छुप कर किया है, जहां से मैंने कैसे छुपाऊं उसे इस बेदर्दी दुनिया से इस जमाने से। दाग तो है ये दुनिया के लिए, मेरे लिए तो प्यार है ये पावन पवित्र जो इस बेदर्दी दुनिया को मंजूर नहीं है। पर छुपाऊं कैसे, कहां आते हैं मुझे वो फरेब छुपाने के, लागा चुनरी पे दाग पाऊं कैसे।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। काफी अच्छी बातें हो रही है। विभा जी हमारे साथ हैं और वो अपने अपने जो गीत सुनने के बाद या सुनकर जो भाव हमें प्रेजेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं वो सीधे ही हमारे दिल को छू लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी विभा जी 1962 में, एक साल पीछे हम लोग अगर चले जाते हैं, 63 में दिल ही तो है रिलीज हुई थी, लेकिन उसके पहले एक फिल्म आई थी असली नकली जिसका नाम था, और इसमें भी एक गाना है एल अक्षरा से,
1: लाल छड़ी मैदान खड़ी,
0: लाख छुपाऊं छुप न सकेगा,
1: असली नकली चेहरा।
0: जी हाँ साथियों, विभा जी ने बताया सही गाना कि लाख छुपाए छुप न सकेगा ये गाना है, और ये असली नकली इस एल्बम का गाना है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बताई गई है, एक अमीर युवक की कहानी बताया गया है और वो खुद को साबित करने के लिए अपने घर की जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें त्याग कर मुंबई जैसे शहर में आता है और वहां पर कुछ काम करने लगता है, लेकिन उसका जो है काम के बजाय वो कहीं और अटक जाता है।

0: है रेनू नाम के एक लड़के से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। तो यहाँ पर फिर उस लड़के से मिलने के बाद एक रहस्यमय जो कहानी है वो सस्पेंस है, वो इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा, असली और नकली 1962 का। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा विभाजी, चलिए अपन सीधा गाना सुनते हैं अभी, है ना। 1962 का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए।
1: आंख मिली और बात बड़ी, वो रिश्ते जो देखते ही छू जाते हैं दिलों को, आंखों के रास्ते दिल में बसते हैं, तेज करते हैं धड़कनों को, दिए में घी का सा काम करते हैं, दिल तो बस दिल से भी गए और जान से भी गए, लाल छड़ी मैदान खड़ी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, लाख छुपाए छुप न सकेगा, असली नकली इस एल्बम का। विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे से। बहुत अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं आप और पुरानी यादों पे लेके जा रहे हैं, जिससे मुझे बड़ा आनंद आ रहा है।
0: तो चलिए 1965 में चलते हैं अभी, और यहाँ पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जानवर। जी हाँ, ये शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था, खूबसूरत फिल्म। और इसमें भी एक गाना है जो एल अक्षर से शुरू होता है,
1: लब पे आती है तमन्ना मेरी।
0: नहीं नहीं, ये तो गजल है जो क्राई फॉर क्राई एल्बम का है, उसके पहले वाला गाना है जो आपने थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपको, वो गाना बताया था,
1: लाल छड़ी मैदान खड़ी।
0: जी जी जी, बहुत सही पहचाना आपने, लाल छड़ी मैदान खड़ी। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, थोड़ा सा मस्ती भरा जरूर है, और इस गाने को भी शैलेंद्र साहब ने लिखा था, और इस गाने को जो आवाज दिया था, मस्ती जो इसमें आपको मालूम पड़ता है या आप फील करते हैं, वो मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत आवाज का जादू है। तो शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना जानवर इस एल्बम का अभी आपको हम लोग सुनाएंगे। और विभा जी, आपने इस फिल्म को देखा है क्या?
1: देखा है, इतना समय हो गया तो याद भी नहीं, बस इतना याद है कि वो लाल छड़ी पकड़ के उसको, क्योंकि लड़की ने भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो जैसे तंज करते हुए वो उसको तंग कर रहा है, और उसमें लड़की को

0: क्योंकि हंस कह रहा है क्योंकि वो भी लाल कपड़े हैं और छड़ी हाथ में पकड़ी हुई है, बस इतना सा ध्यान आता है उससे जैसे ऐसे कह रहे हैं आंख मिली और बात बड़ी की बात करते हुए आंखों के रस्ते दिल में बसने वाले रिश्तों की बात वो कर रहे हैं।
1: जी जी जी, शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया है पूरी तरह से। शम्मी कपूर, राजश्री, राजेंद्र नाथ, श्यामा और असित सेन इसमें काम किया है। और शम्मी कपूर जो है एक हीरो है और उनके माता पिता चाहते हैं, क्योंकि वो अमीर हैं इसीलिए वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी एक बहुत बड़े परिवार में एक अच्छे लड़की से शादी करने के सपने देखते हैं, जबकि वो सपने उनके टूटने पर हो जाते हैं। और फिल्म का पूरा क्लाइमेक्स यहीं पर है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं जिसको विभाजी ने याद कराया है, 1965 का जानवर इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए खास।
2: आंख मिली और बात बड़ी, वो रिश्ते जो देखते ही छू जाते हैं दिलों को, आंखों के रास्ते दिल में बसते हैं, तेज करते हैं धड़कनों को और दिए में घी का सा काम करते हैं, दिल तो बस दिल से भी गए और जान से भी गए, लाल छड़ी मैदान खड़ी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा, जैसे कि आपने एक गीत याद कराया था, लपियाती है दुआ बन के तमन्ना में, क्राई फॉर क्राई इस एल्बम से है और ये जगदीश सिंह का एल्बम है और उसने ही तो इस गाने को हम लोग सुनेंगे अभी। विभा जी, इस गाने को सुना है आपने कभी?
2: जी, मैंने बहुत बार सुना है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और इकबाल जी मेरे बड़े अच्छे मुझे बहुत पसंद है, राइटर भाव है। काम आ सकूं सबको इतनी तौफीक देना मुझे, हर बार हाथ बढ़ाना अपना और थाम लेना मुझे, ना डोलो भटकूं ऐसी ही राह पे चलाना मुझे, बस यही तमन्ना है मेरी जो दुआ बन के लबों पे आती है।
3: ऐ खुदाया नेक राह पे चलाना मुझे, हाथ पकड़ कर मेरा सही रास्ता दिखाना मुझे, काम आ सकूं सबके इतनी तौफीक देना मुझे, हर बार हाथ बढ़ाना अपना और थाम लेना मुझे, न डोलू न झटकू ऐसी राह पे चलाना मुझे, बस यही तमन्ना है मेरी जो दुआ बनकर लबों पे आती है, लब पे आती है तमन्ना मेरी।

0: जी हाँ, ख्वाबों का सफर आप सुन रहे हैं और हमारे साथ आज विभा जी हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे एल अक्षर वाले गीत हम लोग सुन रहे हैं। चलिए अब एक और फिल्म की तरफ मैं ले चलता हूँ। एक फिल्म आई थी, वो कौन थी ये फिल्म का नाम था और मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। मनोज कुमार और साधना पर ये पिक्चराइज किया गया था जिसमें प्रेम चोपड़ा और हेलन इसके साथ में के एन सिंह भी काम करते हैं। ये फिल्म जो है बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट किया था इसमें, मुझे लगता है विभा जी आपको पता हो, आपने देखा हो तो।
1: पिक्चर तो मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन मनोज कुमार मेरे फेवरेट एक्टर है इसलिए उनके सारे गाने में बड़े आराम से प्यार से और बड़े मजे के साथ सुनती हूँ। और यहाँ साधना जी मस्ती कर रही हैं तो ये गाना भी बहुत मेरे अच्छे गानों में से, मेरे फेवरेट गानों में से एक है।
0: जी जी जी।
1: इसके भाव हैं, किसने लग जा गले हंसी रात हो ना हो, किसने देखा है कला आज ही ने इस पल को जी भर के। ये मेरे भाव उठते हैं कि ये इसमें उन पलों को पूरी तरह जी लेने की बात कर रही है साधना जी,
0: की
1: ढेर सी बातों के साथ और कल नसीब में हो ना हो कल की घड़ियां आज जी भर के जी लें। जी से पता है कि कल आए या ना आए, कल का हो ना हो दस्तूर हो ना हो, आज ही पूरे जी भर के रो भी लें गा भी लें हंस भी लें पूरी मस्ती के साथ।
0: चलिए, लगता है इस गाने के साथ आपने काफी अच्छा अनुभव किया है, आपका करीबी गाना लगता है दिल तक का, इसलिए आप अपने भावों को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और गाना मैसेज यही देता है कि वर्तमान में जियो, कल और बीते कल की बातों को छोड़ दो क्योंकि कल तो गया है, उसके बारे में हम लोग फिर से नहीं सोच सकते और ना ही वो कल गया हुआ फिर से आएगा और ना ही आगे वाला कल जो आने वाला है उसके बारे में हमें कुछ पता है, इसलिए जो कुछ भी है हम जिसे देख सकते हैं जिसे छू सकते हैं फील कर सकते हैं वो आज है, तो आज इस पल को एंजॉय करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत भाव इसमें आता है और इसके साथ में एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, यहां पर एक डॉक्टर की कहानी बताई गई है और डॉक्टर होने के बाद भी कुछ लोग उसको इस तरह से गुमराह करते हैं कि एक ही लड़की को दो जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें बड़ा ही लास्ट तक जो है वो गुत्थी बनी रहती है, सस्पेंस बनी रहती है और दर्शक इसे देखते रह जाते हैं, लास्ट में एक सीन में वो चीजें क्लियर हो जाती है, तब तक ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति नहीं दो व्यक्ति हैं जबकि व्यक्ति एक ही होता है। तो इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है राज खोसला साहब ने, वो बड़े ही सुंदर ढंग से इसको डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी को लिखा था ध्रुव चटर्जी और इसको संगीत से सजाया था मदन मोहन साहब ने, उस जमाने के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार में से एक उनको गिना जाता है, आज भी उनके संगीत को लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। तो चलिए अब लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आपके नाम।
2: किसने देखा है कल आज जी लें इस पल को जी भर के, प्यार के साथ ढेर सी बातों के साथ, दो हाथ अपना दो साथ अपना, नसीब ने दी जो है ये घड़ियां आज जी लें करीब से, किसे पता कल आए ना आए, नसीब से मिले हैं इस पल को जी लें, कल मौका हो ना हो दस्तूर हो ना हो आज जी लें प्यार से, और रो भी ले डाल के वाहें गले में शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हंसी रात हो ना हो।

0: जी विभा जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं और कहीं और ही लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी सर्जरी पीछे के पीछे ले जा रहे हैं। और यंग एज वाला टाइम याद आ रहा है जिसमें पुराने गाने सुनते हुए मैं अपना होमवर्क किया करती थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर वही दिल लाया हूँ। इसका मतलब है एक फिल्म का नाम है जो 1963 में रिलीज हुआ था और ये फिल्म भी बहुत ही अच्छा हिट रहा उस समय में। ये फिल्म उस समय बहुत ही हिट रहा और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म का एक गाना है वो आपको बताना है जो एल अक्षर से शुरू होता है।
1: लाखों है निगाहों में जिंदगी के रहा।
0: सही पहचाना आपने। जी जी,
1: इसमें हीरो जो है वो
0: विश्वजीत।
1: विश्वजीत, हाँ जी,
0: जी, जी।
1: इसमें विश्वजीत है और ये वो उस तलाश की बात करें जैसे उनकी प्रेसी जो उनके मन के अंदर एक छवि सी बनी हुई है ऑलरेडी और उसकी तलाश में है। वो कह रहे हैं हर चेहरा इधर उधर देखने को मिल रहा है, लाखों चेहरे हैं लेकिन वो जिसकी तलाश है वो कहाँ है, वो उसको ढूंढ रहे हैं। और आंखों की बात कर रहे हैं, जुल्फों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो पूरे का पूरा चेहरा उनकी छवि में उनकी कल्पना में है, हर तरफ ही तो है हसीन चेहरे, किसी की निगाहें किसी की

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ख्वाबों का सफर और हम पहुंचे हैं अब आखिरी मोड़ पे कार्यक्रम के। तो विभा जी, आखिरी गाना कौन सा है आपके जहन में या आपको याद आता है एल अक्षर से?
1: लाखों है दिल वाले और प्यार नहीं मिलता।
0: ओह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। किस्मत फिल्म जो 1968 में रिलीज हुई थी और ये मन्नू देसाई ने इसे डायरेक्ट किया था, ओपी नैयर साहब ने संगीत से संवारा था और कमल मेहरा ने इसको निर्माण किया था। और कलाकार जैसे कि विश्वजीत चटर्जी, बबीता हेलन, उल्लास और मुराद इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे। और इसमें विश्वजीत को एक संगीतकार के रूप में, गायक के रूप में बताया गया, गिटारिस्ट के रूप में बताया गया, लेकिन गिटार के साथ साथ पूरी फिल्म जुड़ी हुई है। गिटार के अंदर एक ऐसी चिप छुपाया जाता है जिसको पाने के लिए पूरे गुंडे या जो भी विलन है वो विश्वजीत के पीछे पड़े रहते हैं। और इस बीच में एक लड़की जो भाग कर आती है वो उसके साथ जुड़ जाती है, एक होटल की सीन इसमें बताया गया है। बस पूरी फिल्म यहाँ पर इन तीनों के साइकिल में घूमती रहती है, पूरा फिल्म में दौड़ ही दौड़ है। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों ने अगर फिल्म देखा हो तो जरूर उनको स्टोरी याद आ गई होगी। और विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी श्रोताओं का शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है और उनको सबको बहुत पसंद आएंगे ये बहुत अच्छे। इसको आराम से ऊंची आवाज में करके प्यार के साथ सुने तो बड़ा मजा आएगा।
0: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। एचएस बिहारी साहब ने इसे लिखा था और महेंद्र कपूर साहब ने इसे आवाज दी है, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म किस्मत का ये गाना आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं। और इसी के साथ मुझे और विभा जी को दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्ते, खम्मा गनीसा।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0408 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट नाउ

0: have a laptop. You know, ये thought जो create कर ली, ये thought वो positive energy को create कर देता है. तो सबसे पहली realization ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस feeling को नहीं create कर रहा है, मेरी अपनी thoughts, क्योंकि हमने chain में देखा कि thought gives rise to feeling, nothing else. कोई भी और चीज वो feeling नहीं create कर सकती है. तो now it's in my hand कि laptop लाने के बाद मैं उस अच्छी feeling को create करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: आम बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये भी है वो भी है, दिल पहचान मेरे यार है पुराने, ये भी है वो भी है तू भी है।

जाने अनजाने यहाँ सभी हैं दीवाने, ये भी हैं वो भी हैं।

0: अनजाने यहाँ तभी है दीवाने, ये भी है ये भी है वो भी है, जाने अनजाने यहाँ तभी है दीवाने, ये भी है वो भी है, दिल पहचाने मेरे यार है खुदाने, ये भी है वो भी है।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा, और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ

0: धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लूट।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आणि तुम्ही तुमच्या आवडीच्या शो मध्ये आहात, म्हणजे हा खेळ शब्दांचा, हा कविता व चारोळ्यांचा शो, ज्या शोने 6 वर्ष पूर्ण केलेले आहेत आणि 7व्या वर्षामध्ये

0: करते आप?
1: भगवान की ताका जाप।
0: त्योरे निखट्टू भाड़े के टट्टू और नहीं कोई तुझको काम। जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू राम नाम।
1: अरे

क्यों है लाला सुंदर लाल, कहो आजकल क्या है

0: जब कहे ही गए कवि तुलसीदास।
1: पर अल्ले की माने भैया पढ़ी नहीं रामायण, पढ़ी जो होती काहे मेरे पीछे पड़ती डा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।

0: मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल, चल,

0: और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी।
1: हेलो मनु।
0: पुराना स्तंभ जी, एक बात पूछूं? अगर मेरे पास एक बाउल हो जिसमें बहुत सारे पत्थर भरे पड़े हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा हीरा छुपा हो और बहुत नीचे हो, अगर वो बाउल मैं आपको दूं और बोलूं कि उसमें से एक ही चीज उठानी है, तो आप क्या करेंगे?
1: जाहिर है मैं ढूंढ कर भी हीरा ही निकालूंगा अपने लिए।
0: मुझे पता था। एक्चुअली अपने कॉलेज में हम एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव चेक। मतलब अगर हम इस पत्थर से भरी बाउल को एक इंसान से कंपेयर करें, तो ये पाएंगे कि किसी भी इंसान में भले बहुत सारे अवगुण हो, मगर फिर भी एक छुपी हुई क्वालिटी तो ढूंढ ही सकते हैं। तो क्यों ना अपना पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदला जाए और सभी में हीरा ढूंढा जाए।
1: हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा रहेगा मनो। कई मामलों में अगर देखने का तरीका सही हो तो कितना कुछ बदल सकता है। इससे परिवार में मधुरता आ जाए और ऑफिस में भी तकरार थोड़ी कम हो जाए।
0: इस पर्सपेक्टिव चेक एक्ट

0: सिटी में बहुत सी ऐसी और भी एक्टिविटीज हैं, सेल्फ एनालिसिस यानी आत्मनिरीक्षण की।
1: तुमने आत्मनिरीक्षण की बात की तो चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम जरूर प्रभावित होंगी।
0: हाँ हाँ, पुराना स्तंभ जी, पिछली बार आपने बताया था ना कि कैसे बालक ज्ञानदेव और उनके तीन भाई बहन यानी निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई ब्राह्मण समाज के बहिष्कार को सहन कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता विट्ठल पंत संन्यास लेकर वापस आए थे और इस कारणवश उन्हें समाज में नीची नजर से देखा जाता था। पिता विट्ठल पंत और माता रुक्मणी ने देहांत प्रायश्चित किया। पैठण के ब्राह्मणों ने चारों ही बच्चों को मान्यता भी दी, परंतु आरंदी गांव में अभी भी उनके लिए समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। अब बताइए ना आगे क्या हुआ।
1: ठीक है, ध्यान से सुनो।

0: जब ज्ञान देव अपनी बहन और भाइयों के साथ वापस आ गए तो क्या हुआ, इसके पश्चात भी कुछ लोगों ने उन्हें तंग करना आरंभ रखा। परंतु चारों ही बच्चे विलक्षण बुद्धिमत्ता के धनी थे, वे ज्ञानी और प्रभु रस से भरपूर थे। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई कुछ समय आंधी में ही रुके।
1: अच्छा।
0: इसके पश्चात उन्होंने नेवासा जाने का निर्णय लिया। चारों ही भाई बहन कुछ वर्ष वहीं रहे। इस जगह की अपनी अलग महिमा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां मात्र 15 वर्ष की आयु में ही ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी की रचना की। ज्ञानेश्वरी मराठी भाषा में रची गई श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई सर्वप्रथम टीका है।
1: अरे वाह।
0: संत ज्ञानेश्वर ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ के निर्देशन में व अन्य संतों के समक्ष ये महान कार्य किया। इसमें गीता के मूल 700 श्लोकों का मराठी भाषा की 9000 ओवियों में अत्यंत रसपूर्ण विशद विवेचन है। 28 अभंगों या छंदों की इन्होंने हरिपाठ नामक इप्स में अत्यधिक है मराठ है और शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है।
1: अच्छा।
0: इसके अतिरिक्त संत ज्ञानेश्वर के रचित कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, अमृता अनुभव, चांगदेव पाशस्टी, योग वशिष्ठ टीका आदि आदि। ज्ञानेश्वर ने उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पंढरपुर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की।
1: इतने सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा।
0: एक और रोचक घटना है जिसका वर्णन कई जगह पाया जाता है।
1: और वो कौन सी?
0: उसके बाद जब ये भाई बहन पंढरपुर गए, वहाँ उन्होंने नामदेव से मुलाकात की, जो संत ज्ञानेश्वर के बहुत अच्छे मित्र बन गए।
1: अच्छा।
0: संत ज्ञानेश्वर और नामदेव ने भारत भर में विभिन्न पवित्र केंद्रों की तीर्थ यात्रा शुरू की, जहाँ उन्होंने कई लोगों को वारकरी संप्रदाय में शामिल किया। इस अवधि के दौरान संत ज्ञानेश्वर ने अनेक रचनाएं तैयार की, जिन्हें अभंग कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: कहते हैं एक हठ योगी कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी प्राप्त की हुई विद्या से संत ज्ञानेश्वर की परीक्षा ली। और वे अपनी चमत्कारी शक्तियों का परिचय देते हुए सफल हुए।
1: अरे वाह।
0: संत ज्ञानेश्वर को संजीवन समाधि में प्रवेश

0: वो कहावत है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बस इस कहानी से ये सीख लो, भगवान सिर्फ सच्चे दिल और अच्छे कर्मों से ही खुश होते हैं।
1: हम भगवान के बच्चे हैं, वैसे ही बाकी सब भी हैं। मतलब हम किसी के साथ भी अगर गलत करेंगे तो कितना भी पूजा पाठ करें, भगवान खुश कैसे होगा।
0: हाँ, और अपने को कम आंकना, काला मोटा पतला ये सब सोच के दुखी होना, मतलब ईश्वर की रचना पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो खुश कैसे होगा फिर। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो दूसरी बात है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा पुराना स्तंभ जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।

लेकिन मैंने जो पसंद की है वैल्यू वो है समाने की शक्ति। मतलब कभी भी कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई बात हुई, ना एक की बात दूसरे से कहना, ना दूसरे की बात तीसरे से कहना, बल्कि इतनी सारी समाने की शक्ति होना कि किसी ने कुछ भी कहा तो बस उस बात को बिंदु लगा के वहीं खत्म कर दिया या भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, अक्सर हमें कोई बात पता चलती है किसी के बारे में, या हमसे कोई सीक्रेट भी शेयर करता है बहुत विश्वास करके, फिर भी हम अपने तक नहीं रख पाते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को उसका वर्णन कर देते हैं। हम तो बुरा सोचते ही हैं किसी व्यक्ति के बारे में, साथ साथ हमने जिसको बताया वो भी उस व्यक्ति से कोई नाता होते ना हुए भी उसके बारे में बुरा सोचने लगता है, क्योंकि हम उसे इतना सब कुछ वर्णन जो कर देते हैं। मतलब दोस्तों, अगर किसी ने कोई गलती की भी है और हमें पता भी है, तो मुझे लगता है उसकी गलती का तो ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी से मैंने ये सीखा कि उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनका बार बार वर्णन करना बहुत जरूरी है। हमें बस इतना करना है कि पिक करना है किस बारे में बात करनी है, किस बारे में नहीं। नेगेटिव चीजों और बुराइयों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट आपका भी और उनका भी जिनसे आप शेयर करते हैं। तो इसीलिए जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं और बातों को परिवर्तन करते हैं, ये सीख हम अपने साथ लेकर जाएंगे ज्ञानेश्वर महाराज जी की कहानी से। तो दोस्तों, मेरा वक्त हो चला है जाने का, मैं फिर मिलूंगी आपसे पुराने स्तंभ जी के साथ नई कहानी में। आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। जी हाँ, हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर

0: आता है कभी नीचे, तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो हमारी जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी। हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीजें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीजें तय करती है। हमने पूरा की पूरी साइकिल देखी थी, उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है, तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रख पाऊं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेकर जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है, वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है।
1: जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता, तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है, जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सो समवेयर वट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड और बैड, इट वॉज समवन एल्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन, सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीजें टाइम टू टाइम आ रही थी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन सिनारियों में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल
0: तभी मैं खुश,
1: बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब।
0: सुश्री शिवानी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात, जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं या कोई भी चीजें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
1: एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनी वन एंड दे वॉन्ट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगला, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहां ध्यान रखने की बजाय, जहां वो क्रिएट होती है, मैंने वहां ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूं जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजेंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूं, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूं अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। सो एवरीथिंग वॉज बींग डन फॉर हैप्पीनेस, विच वॉज ओके फॉर सम टाइम, इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई, तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट।
0: वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया,
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया, एंड आई सॉ कि माई इंडेक्स वॉज क्रैशिंग एवरी डे। पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है। तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना। आज मेजोरिटी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी स्ट्रेस, एंगर, व्हाटएवर, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे। और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है, क्यों? क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरी मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने थे, चाहिए थी खुशी, स्वीकार कर लिया दर्द को, और फिर दर्द में जीवन जीने लगे। और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना।
0: इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है, जो जो जो कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पर काम कर रही थी। See, I kept on working, yeah. and I'm still working.
1: This is absolutely fine. No, but who kept on working?
0: I
1: in pain.
0: Because I was looking for happiness.
1: Yes. So once I am in pain and I keep on working, whatever work I do, uska net result
0: pain will be.
1: तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है, मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, थॉट्स मेरी क्रिएशन है। बिफोर दिस तो आई वॉज नॉट इवन लिविंग इन दैट अवेयरनेस, आई थॉट आपकी वजह से थॉट क्रिएट हो रहा है। तो थॉट मेरी क्रिएशन है या थॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप पर डिपेंडेंट है। तो समवेयर माई थॉट्स वर नॉट इन माई कंट्रोल, माई थॉट्स वर इन द कंट्रोल ऑफ,
0: इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो थॉट क्रिएट हो जाता है।
1: तो हम अवेयर नहीं है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंड सेट, कि आज दिन तक आई वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माई हैंड। अब ये हुआ कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई कंट्रोल। दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything.
0: This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, you know, very strong feeling. But अभी भी हो नहीं पा रही है चीज।
1: वो ऐसे, it's not magic, you know. जब आप एक mindset से सालों से चलते आ रहे हैं, this is the process which has to begin. हमें आज से ही सिर्फ एक ध्यान रखना है। Situations आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, व्यवहार, सब कुछ करते करते करते जैसे सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट। जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो। वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रिएट कौन कर रहा है। क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट। जस्ट नाउ my job is in, you know, at stake, yeah, my salary packages, yeah, my boss is shouting at me, everything is happening around me, lekin jo main thoughts create kar rahi hu, I just have to watch, ye fir bhi main hi create kar
0: rahi hu. Main keh rahi hu ki jab feeling itni strong ho chuki hai, suppose mere boss ne shout kiya mujhe, mujh pe shout kiya, bahut strongly shout kiya, matlab jo bhi sabke samne, the feeling of, you know, betrayal, feeling of being hurt, फीलिंग ऑफ फील, यू नो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया।
1: नहीं नहीं नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई, अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी। पहली बात, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से। यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं। दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट। बॉस अभी वही है,

0: ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया. उस सीन को देखकर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील.
1: बट एक ऑब्वियसली वेरी लो,
0: जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स. ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी energized. Feeling categorical नहीं होती है. ये आपने categorize किया था अभी, betray किया, insult किया, मैं hurt हो गई, you know, ये feel, ये सारा कुछ thoughts है. We kind of tend to mix up between the two of them, कि ये thought है या feeling है. Thought is very structured. और जिस तरह की, जिस quality की आप thought create करोगे, फिर you will either feel good or you will feel bad. Feelings are not structured. Thoughts are structured. Feelings में बहुत सारे ऐसे
1: fluid है, actually feelings
0: are आपको ऐसे feelings अलग अलग नहीं आएगी. ये insult की feeling है, ये betrayal की feeling है, ये hurt. It's only feeling low or it's feeling good. And this low and high will depend on ये जो structured thoughts आपने create किया. अब उसी scenario में आप कोई और quality of thought create करो, कि मैंने जो किया, first I'll check my work कि वो sincere था या नहीं. हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है. जब उनका मूड ठीक हो सकता हो जाएगा, मैं जाकर बात कर लूंगी. हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं. सी वन थिंग व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो. उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ. एंड जस्ट वो जो पूरे चार लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी. जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय. आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय. जो लोग यहां बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज द वन हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज द वन हु हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा. आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे वॉट दे फील, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. मैं सोचती हूँ कि सबके सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी. और अगर मैं स्टेबल रही, माई फेस डजेंट शो एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, my body language is absolutely smooth, you will see everyone there is smooth. Lekin main upar niche ho gayi, disturb ho gayi, main unke bare mein galat bolne lagi, phir wo mere bare mein ab sochenge. To ye meri jo soch bahut fast chalti hai us time jab ye scenario create hota hai. Unhone daanta, wo mere control mein nahi hai totally, lekin ab kya kya hona hai uske baad, wo sara kiske control mein hai. Wo sara mere control mein
1: hai. फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा, ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो, पूरे
0: मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी. लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी. एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ
1: बिकॉज़
0: लोग क्या सोचेंगे. कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो, लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है. अगर इफ आई एम फीलिंग लो टूडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है, लोग क्या सोचेंगे. लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स. मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
1: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे.
0: एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे. जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी. पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचूं ना. आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे, हाउ डज दैट मैटर? दैट डजंट बिल्ड माई सेल्फ एस्टीम. लेकिन मेरे लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है. दैट इज वॉट आई थॉट, कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे
1: तो आई फील राइट.

0: फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने ज्यादा ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है। बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है। अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं, मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है, इन्होंने तो फिर भी डांटना है, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिना बात के इतनी मेहनत करो, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है। नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ थॉट। अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा,
1: फीलिंग इतनी लो हो चुकी है। यू नो, हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट,
0: नाउ व्हाट विल बी माय डेस्टिनी, बिकॉज नाउ विद दैट लो क्वालिटी ऑफ थॉट एंड दैट लो फीलिंग आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर और ऑन माय फाइल और वट एवर विद दीज थॉट्स कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा, वो एनर्जी कैसी होगी जो रहे। अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है।
1: वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं ना। नहीं,
0: अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी। अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ। व्हेन आई एम हर्ट कैन आई लाइक द बॉस, आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन। तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई, आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट। काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़ेगी,
1: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन।
0: यस, सो आई क्रिएट द थॉट विच दिस क्रिएट्स फॉर मी द सेम थिंग व्हाट आई कुड डू इज कि डांट पड़ी है, वट एवर रीजन जिसके लिए उन्होंने डांटा, आई हैव टू स्टिल गो बैक टू माई वर्क। इट मे नॉट बी वेरी इजी दैट टाइम, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो आई हैव गॉट इन टू द हैबिट ऑफ वो डिजेक्टेड थॉट्स को फील करना। इफ आई कैन, इट्स नॉट ईगो, बट इफ आई कैन गो बैक टू माई डेस्क एंड से ओके लेट मी गेट बैक टू द वर्क ऑल ओवर अगेन। पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी इम्पोर्टेंट कि आई गो बैक विद फोकस, एंड अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, आई स्टिल गो बैक, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, लेट्स सी अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं। बट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दोज नेगेटिव थॉट्स उस टाइम, और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूं, अगर मैं हर्ट नहीं हूं तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूंगी। आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ। तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेस रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेस कब रख सकेंगे, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है।
1: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊं कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना,
0: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है। यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना। शुभ भावना सिर्फ यह है कि आप स्टेबल हैं,
1: मैं
0: एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना। मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल, कि वो बदला लेकिन आई वॉज स्ट्रांग इनफ चेंज करने की। इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। इट इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट।
1: मैं उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात करूं,
0: इट्स ओनली वन थॉट अवे। इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है। अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है। क्यों मैं बात करूं, बात करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है मैं क्यों बात करूं आपसे, जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की तो मैं आपसे क्यों अच्छे, दैट इज द क्वेश्चन।
1: दैट्स व्हाट आई से ना, व्हेन वी से आई रिमेन अनअफेक्टेड, इज इट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड,
0: दैट इज नॉट अनअफेक्टेड, दैट इज डीप हर्ट। दैट इज डीप हर्ट, दैट इज नॉट अनअफेक्टेड। जो आप कह रहे हैं कि कैन आई, मेनी पीपल हैव ट्राइड दिस, कि कैन आई गो बैक एंड

0: to that person normally. It is very, very, very easy. Kitne din ke baad karna hai?
1: Very easy, you said.
0: Yes,
1: very easy. I was going to say very difficult.
0: Baat karna bahut easy hai. Wo jo period beech mein hai, jab tak ke liye aap apne aap ko convince kar sako ke it is okay, I can go back. See, if you have said something to me jisse I am like totally very, very low, and I can keep saying to myself, inse to ab main fir se kabhi baat nahi karungi, inhone mere sath aisa kiya. So I give those thoughts to myself. It's not ke main inse baat kar nahi sakti. It's just that main nahi karungi.
1: I don't feel like
0: yes, main nahi karungi kyunki inhone itna galat kiya ki main nahi karungi. To karna mushkil nahi hai, lekin decision lena ki mujhe karna hai ya nahi. To normally kya hota hai, hum decide kar lete hain ki hame nahi karna. मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. विच इज ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ. मैं जितनी देर नहीं करती तो इट इज दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है. जिस दिन आपने डिसीशन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है. क्यों नहीं की? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, माई मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही सेड, माई वाइफ इज इन अ लॉट ऑफ पेन. आई सेड, आज प्रोग्राम के बाद वाई डोंट यू ट्राई, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो. ही सेड नो, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे साथ किया. ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहें, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो. एंड ही वेंट आफ्टर द प्रोग्राम एंड ही स्पोक टू हिज मदर. हाउ डिफिकल्ट कुड दैट हैव बीन? हाउ डिफिकल्ट?
1: लेकिन अगेन आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो.
0: सी दैट
1: दैट फियर
0: कि आप मुझे फिर से,
1: मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर.
0: दैट इज द प्रॉब्लम.
1: यस,
0: कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है?
1: दिस इज माई स्ट्रेंथ.
0: दैट्स ऑल. वॉट वी, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट स्ट्रेंथ. माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेसेज आर माई प्रॉपर्टी. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें ये लगता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इफ माई लाइफ, माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस सीनियर से या जिससे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, दैट्स जस्ट मोर देन इनफ. दैट्स मोर देन इनफ. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी. अगेन डिफरेंट डेस्टिनी नो. See this brother, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा. आप अपने जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स. आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को, और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं. उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना, तो किसको बचाया?
1: अपने आप को.
0: अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया. जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल. लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना, फिर और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो जाओ. लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू चेंज.
1: यस, पीपल डोंट चेंज.
0: एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन जर्नी. इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना. इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना. डेस्टिनी डजंट नेसेसरीली मीन जॉब एंड मैरिज एंड प्रॉप. डेस्टिनी मीन्स हाउ आई फील द होल डे इज माई डेस्टिनी. वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सफरिंग, दिस इज माई डेस्टिनी द होल डे.
1: शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठकर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए.
0: श्योर. आई थिंक हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के

0: जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो। मेरी क्वालिटी क्या है, अपने आप को याद दिलाएं, आई एम दैट पावरफुल बींग, मास्टर ऑफ द सिचुएशन, मास्टर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है। टुडे एज आई सेट आउट फॉर द डे, लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई एम दैट पावरफुल बींग, क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। सिचुएशन irrespective, I will still create powerful, positive thoughts. Mera har sankalp shaktishali, shuddh aur positive hoga. Om Shanti.
1: Om Shanti. And thank you so much, Sister Shivani. Ab aapse se bhi vida lena chahenge, lekin yehi kahenge ki happiness index की जो बात करते हैं तो वो हमारे अपने ही हाथ में है। फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जिंदगी में हमने बहुत कुछ पाया, कई रास्तों से हम गुजरे हैं और इस पूरे सफर में हमने हंसते खेलते बहुत कुछ देख भी लिया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंदर एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, कुछ कमी रह गई है और उसी कमी को तलाशने की कोशिश हमारी श्रृंखला में है कि वो खालीपन क्या है। क्या हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, कहीं लगता है कि हम कम रह गए हैं। यही सारी बातें हैं जिन्हें आज हम तलाशेंगे अपनी इस कड़ी में, और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति सिस्टर शिवानी। बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं, ईगो को भी पहचान लिया था, सेल्फ अवेयरनेस की भी बात हमने कर ली थी, लेकिन अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि कुछ नहीं है, खाली है, हम बहुत कहीं कुछ नजर नहीं आता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लगता है कि मुझमें ही शायद अच्छा नहीं है। क्यों होता है ऐसा सब कुछ?
1: एक एम्प्टीनेस सा भी आ जाता है जिसको होलोनेस कहते हैं, कि बहुत खालीपन है। बाहर रीति से देखा जाए तो सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जॉब, सैलरी, शरीर ठीक ठाक है, सब कुछ होते हुए भी वो जो इनर कंटेंटमेंट कहें या भरपूरता कहें, उसकी शायद कभी कभी कमी महसूस होती
0: उसे कई बार एक्चुअली, क्योंकि ये कई एक पूरा जो सफर है ये एक एज तक हमें कवर करते हैं, उसके बाद जब हम पहुंचते हैं इस पे कि एम्प्टीनेस का एहसास हो तो उसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कह देते हैं।
1: right.
0: बहुत बार ये नाम दिया जाता है, कई सारी और बातें की
1: वो इसलिए एक्चुअली ये नहीं है कि उस टाइम पे जाकर वो हुआ, लेकिन उस टाइम पर रुके उसको देखने के लिए।
0: हाँ
1: अभी तक बहुत फास्ट थे हमने, रुक कर एम्प्टीनेस था लेकिन एम्प्टी को भी चला रहे थे। यू नो, जैसे शरीर थोड़ा बीमार होता है तो चला रहे होते हैं उसको, फिर भी चला रहे, लेकिन कहीं जाके फिर वो थोड़ा सा रुकने लगता है, काम नहीं कर पाता, तब जाके लगता है नाउ आई नीड समथिंग, नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड चेक एंड सी व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वो 35-40 के बाद जाकर कहीं टाइम मिलता है रुक करके चेक करने के लिए, बट देन इट्स रियली नथिंग टू डू विद एज। कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, और एक होता है ना धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप होता गया, तो जब एक वो लेवल पर पहुंच जाता है तब जाके भी एक रियलाइजेशन होती है, बचपन में पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो सेल्फ एस्टीम को डेवलप कर।
0: एक्चुअली वो जो खालीपन की हम बात करते हैं उसे भरने के लिए हम कई तरीके करते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी हम फिल्म देखने चले जाएंगे, कभी हम शॉपिंग, अगर वुमेन की बात करते हैं तो वो शॉपिंग पे चली जाएंगे, लेकिन सम

0: यार डीप वो जो खालीपन था, एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी चीज मायने नहीं रखती,
1: राइट,
0: तब फिर तलाश शुरू।
1: सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम आखिर क्या है, बिकॉज इट्स अ वर्ड विच इज कैचिंग ऑन, यू नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आपके पास बहुत सारी आज किताबें हैं इस टाइटल को लेके, सेल्फ एस्टीम, लेकिन सही मायने में, और उसकी एक बहुत हाई डेफिनेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन बहुत सिंपल रूप में अगर हम उसको एकदम सिंप्लीफाइड रूप में लें तो सेल्फ एस्टीम क्या है, इट्स सिंपली पुट हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ एट एनी पर्टिकुलर टाइम।
0: इस वक्त मैं अपने बारे में क्या महसूस
1: क्या महसूस कर रही हूँ, दैट सेल्फ एस्टीम, और कुछ भी नहीं है। अपने बारे में मैं क्या फील करती हूँ, डू आई द फील गुड फैक्टर।
0: एक्चुअली मैं कितनी बार ऐसा करती हूँ, आप लो फील करने लगते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी ये कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी लो।
1: हाँ,
0: सो मतलब कोई वजह नहीं है कि वो लो फील क्यों हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: बट इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली,
1: इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम लो ही फील कर रहे हैं, और जितना लो फील कर रहे हैं उतना उसको बाहर से फिर कुछ ना कुछ करके, मतलब हम अंदर भरने की जगह उसको बाहर फिर एक प्रोजेक्शन के रूप में दिखाते
0: हैं। और सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों में जो आ रही है, बच्चों इन द सेंस की टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, इनफैक्ट हमारे पास एक मेल है, इसको पहले हम ले लेते हैं कि ये हमें आया है नागपुर से, और ये एक मदर है जो कहना चाह रही है कि उनकी बेटी 14 साल की है, शी इज बिकॉज वो प्यूबर्टी में है, वो शी इज प्लम्प, और वो इतनी लो सेल्फ एस्टीम उसकी हो गई है कि वो ना बाहर निकलना चाहती है, वो अच्छी खेलती, ये लिख रही है कि वो अच्छी भली थी, खेलती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि उसने वेट इतना पुट ऑन कर लिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो अब ना बाहर जाती है, ना किसी पार्टी में जाती है, ना किसी यू नो फैमिली फंक्शन में जाती है, किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, चुप हो गई है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा इतनी बात करने के बावजूद भी कि वो कैसे निकलेगी।
1: राइट,
0: इट्स अगेन यू नो लाइक
1: वेरी कॉमन थिंग।
0: हाँ, लो सेल्फ एस्टीम, और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर पड़ता है चारों तरफ।
1: बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे ये लो फीलिंग का है, इस तरह से खालीपन का है, क्योंकि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं इसको हमने बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड कर दिया कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं। हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ टूडे इज बेस्ड अ लॉट ऑन हाउ आई लुक। माई लुक्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टूडे इन जनरल,
0: लेकिन वो तो जनरली है, मतलब जनरली जो सब लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे दिख रही हूँ। इनफैक्ट आज के दौर में अगर हम देखें तो एज नो बार हो गया है, यू नो लाइक पहले ये होता था कि चलिए 40-45 तक आते आते लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब तो हम मोटे भी हो जाएंगे, या ठीक है हम बूढ़े लगने लग गए हैं।
1: अब तो लेकिन वो भी नहीं है,
0: अब तो दे हैव बिकम सो कॉन्शियस, मतलब हेल्थ को लेके हेल्थ क्लब्स चल रहे हैं, वेट लॉस का पूरा, ब्यूटी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इतना कुछ हो गया है अब तो और ज्यादा अवेयरनेस हो गई।
1: तो हेल्थ कॉन्शियस इज ओके, दैट्स वन पार्ट, क्योंकि वो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन जहां तक एक मतलब नीट एंड क्लीन दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट बिकॉज हाउ आई लुक बट हाउ आई फील। आई शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी, बट हाउ आई फील, मैं अपने बारे में कैसा महसूस करती हूँ कि नॉट बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, क्योंकि लुक्स जो है, आज शरीर कैसा है दिखने में, वो एक टेम्पररी चीज है ना, आज अभी है कल नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पांव कट गया, तो क्या करेंगे, आई विल बी एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई लुक। आज ठीक है, 40-45 के बाद क्या, इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल एंड विच इज गुड, यू नो, किसी से भी आप पूछिए आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को, आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल, लेकिन जब वो आए समझ में आ जाएगा तो वो लुक ब्यूटिफुल, सुंदर लगने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, शरीर को क्या से क्या बनाने की कोशिश कर देते हैं, कई बार तो असली चेहरा बिल्कुल छुप जाता है उसके पीछे। आज मतलब शरीर के एक एक अंग की हम सर्जरी करवा सकते हैं सो दैट इट इज परफेक्ट, वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट। ये एक मतलब एक हमने एक मान्यता, एक बिलीफ बना लिया है कि व्हेन आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट आई विल फील गुड, बट देन व्हेन आई अंडरस्टैंड द आई के हु एम आई, इज दैट आई ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम अपने शरीर को ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट बना रहे हैं,
0: क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे कि आई इज दिस बॉडी,
1: बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट।

0: इज कि नहीं कि ये शरीर ब्यूटीफुल और परफेक्ट, बट इट इज आई, मैं जो हूँ मैं ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट हूँ कि नहीं.
1: पर सोल तो इज लाइक वी ऑलवेज से इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट.
0: सो नाउ वी नो दैट इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट. सो तो जब ये समझ में आ गया, जैसे आपने कहा कि लेकिन मैं तो हुई हूँ, सी अभी राइट नाउ इट्स अ रियलाइजेशन कि मैं तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट हूँ, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए, क्या करना है. नाउ इट्स इम्पोर्टेंट आई अंडरस्टैंड कि आई एम ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, आई द सोल आई एम ब्यूटीफुल आई एम परफेक्ट. तो फिर ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है कि नाक को इधर से इधर.
1: अच्छा, ये हम ब्यूटी की बात के साथ साथ एक और आई वुड लाइक टू टेक अ मेल एक्चुअली जो एक मदर का है. एंड अगेन मदर एक्चुअली
0: फॉर दैट गर्ल ऑल्सो जिसका हमारे पास वो आया, इट्स इन हर केस शी हैज विथड्रॉन हर सेल्फ फ्रॉम पीपल. इट्स बिकॉज शी फील्स के आई एम नॉट लुकिंग गुड. तो वो उन्हें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शी नीड्स टू वर्क ऑन हर बॉडी, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट कि वो दिखने में कैसे, लेकिन वो एक किस तरह की एक कॉन्शियस जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शी कैन बी नाइस, शी कैन बी हैप्पी, शी कैन बी यू नो लवली विथ पीपल, शी कैन गिव लव एंड पीस टू एवरीबडी. तो इट्स नॉट अबाउट फैट और थिन.
1: Here I want to ask you something, ऐसा जो शिवानी की देखा ये गया है कि जो apparently खूबसूरत नहीं है, जो गोरा नहीं है, खासकर अगर हम भारत में देखते हैं, या जो यू नो स्मार्ट नहीं है,
0: पतला नहीं
1: है, पतला नहीं है,
0: स्मार्ट नहीं है, हमने ये जो बिलीव बना दिया है,
1: उन्हें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा बन के रहना है. आपने भी तो यही कहा अभी कि आप लोगों के साथ अच्छे रहिए, आप लोगों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए, आप अपने अंदर कोई और टैलेंट, इसका मतलब कोई और इन द सेंस, क्योंकि पीयर प्रेशर या पूरा समाज में ये एक्सेप्टेड है कि अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप पतली हैं, अगर आप यू नो स्मार्ट हैं, तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है.
0: नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं. आप ये पहचानिए कि आपकी जो विशेषता है वो आंतरिक है, वो इंटरनल है, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी वर्च्यू है. और जब आप वो सुंदरता को पहचान लेंगे तो लोग आपके शरीर को देखकर आपके नजदीक या आपसे दूर नहीं होंगे. अभी हम क्या फील करते हैं कि जितना दिखने में हम अच्छे होंगे तो लोग हमारी तरफ आएंगे, हमारे दोस्त.
1: लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं?
0: नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है. आप देखिए, आप 5 मिनट किसी से बात करेंगे, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो शायद आप उनके बाह्य स्वरूप को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड आप फर्स्ट टाइम उनसे बात करना चाहते हैं. 10 मिनट उनसे बात करने के बाद अब फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट लुक कितना ज्यादा मायने रखता है उसके बाद. अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है
1: कि वो है,
0: वो है कैसा, वो बोलता कैसे, प्यार से बोलता है मेरे साथ, वो व्यवहार में वो मधुरता है. अब मैं क्या करूं वो सुंदर शरीर को, दैट वॉज जस्ट अ फर्स्ट अट्रैक्शन. लेकिन एक रिलेशनशिप या किसी का आपको स्वीकार करना, आपको रिस्पेक्ट देना, वो बहुत ज्यादा बाह्य लुक्स पर नहीं हो सकता है. इनफैक्ट इस चीज को हम बना लेते हैं बिलीफ. तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारी तरफ उसी चीज के लिए आएंगे, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इफ यू हैव दैट ब्यूटी इन साइड, द होल वर्ल्ड इज विद यू.
1: Somewhere that beauty actually lies in the eyes of the beholder.
0: That is of course a different aspect, but most important is कि वो एक energy है और energy ही energy को आकर्षित करती है. क्योंकि दूसरा भी तो एक energy है, वो उस energy की तरफ ही आकर्षित करेगा. ये शरीर है क्या, it's just like matter. जैसे हम एक सुंदर piece of furniture को देखते हैं, एक बार जब पहली बार देखते हैं we say wow it looks good, but that's all. उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है. अगर वो लुक गुड बहुत अच्छा है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है तो शायद वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है.
1: एंड देन वी स्टार्ट क्रिबिंग, यू नो, इफ वी बाय दैट एंड इवन इफ इट्स ब्यूटीफुल वी डोंट लाइक.
0: सो दैट फर्स्ट लुक इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग. मोर इम्पोर्टेंट इज कम्फर्ट. सो दैट कम्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी, नॉट विद द लुक्स. आपके लुक्स सिर्फ एक फर्स्ट लुक देखकर कहेंगे हाँ लुक्स गुड और डजेंट लुक गुड, बट दैट डजेंट मैटर. और उसमें भी आपका अपना सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करेगा. ज्यादातर दूसरे का इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स बिकॉज हम अपने ऊपर हम फील करते हैं नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं तो दिखने में अच्छी नहीं हूं. तो वो एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं. अगर आप फील करेंगे कि आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. अगर यू आर नॉट कॉन्शियस, हम कॉन्शियस होते हैं नहीं मैं तो बहुत पतली हूं, मैं तो बहुत मोटी.

0: तो दूसरे का भी उस तरह का विचार चलना शुरू होगा. एक्सेप्ट योर सेल्फ, वॉच मैजिक. People will accept you.
1: Definitely.
0: Not accept you, they will love you.
1: Because we just said that actually, अगर हम पहले देखें अपनी बात को कि हमारा जो भी thought है, जो संकल्प है, जो positivity है,
0: energy,
1: वही
0: vibrating. अगर मैं आपको ये energy transmit करते रहूँ कि आप मुझे नहीं like करेंगे, आप मुझे नहीं like करेंगे, आप मुझे नहीं like करेंगे,
1: आप मुझे नहीं like,
0: मैं तो हूँ ही ऐसे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे. अगर मैं ये एनर्जी ट्रांसमिट करूं कि मैं जो हूं जैसी हूं बिल्कुल ठीक हूं, भी अंदर पुरुषार्थ चल रहा है, आउटसाइड आई एम फाइन, दिस इज द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पीपल एक्सेप्ट मी.
1: फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना.
0: तो फिजिकल जो लुक्स पर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का. और उसी के कारण आज हम छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखें तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं.
1: बिल्कुल,
0: वो अपने इनोसेंस को इतनी जल्दी खो देते हैं, इतनी जल्दी वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं,
1: इतनी कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं,
0: बॉडी कॉन्शियसनेस, तो वो अपने असली स्वरूप से बहुत जल्दी
1: दूर होते
0: जा रहे हैं. एंड वो ये समझने लगे कि दूसरों की अप्रिसिएशन हमें, ये बिलीफ सिस्टम है कि दूसरों की अप्रिसिएशन तब हमें मिलेगी जब हम दिखने में बहुत सुंदर होंगे, जब हमने बहुत महंगे और बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी होगी. सो द होल इंडस्ट्री, और इसको मैन्युपुलेट सारा कौन कर रहा है, दी इंडस्ट्री. वो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर और ज्यादा.
1: अगर हम फैशन देखें, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखें,
0: कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल्सो,
1: यस. अच्छा, ये एक हमने ये बात तो की कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है दैट या फिजिकल ब्यूटी है वो हमारी सेल्फ एस्टीम को गवर्न करने का एक जो मुद्दा नहीं होनी चाहिए.
0: और उसके लिए हमें यही याद रखना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू लुक ब्यूटिफुल, आई एम ऑलरेडी
1: beautiful soul.
0: I am beautiful. I can take care of my body.
1: Yes, and I'm a beautiful being basically.
0: Being, yes, absolutely.
1: There is this email जो एक अगेन मदर का है, और इसमें एक्चुअली मैं ही देख पा रही हूँ उनकी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 12 साल की है, एक 7 साल की है. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. एक बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पूरे हर स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ जीतती रहती है, और दूसरी जो है वो उतना ही चुप रहती है. मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी बार कहती हूँ कि बड़ी बहन को देखो वो क्या कर रही है, तो वो कुछ करती ही नहीं है. क्या करूं मैं कि वो जो है उस तक पहुंचे. बट आई फील एक्चुअली मैं को ये दिख रहा है कि ये कंपेरिजन इज अगेन मे बी वन कॉज कि वो छोटा बच्चा जो है, छोटी बेटी नहीं कर रही होगी.
0: हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये भी एक पता भी नहीं चल रहा. और एक्चुअली अभी जो मदर कर रही होगी वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही
1: है. दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि मैं मोटिवेट कैसे करूं, दिस इज हर क्वेश्चन.
0: लेकिन
1: हाउ डू आई मोटिवेट माय डॉटर, यंग डॉटर.
0: लेकिन हमने एक्सेप्ट कहाँ किया कि दोनों अलग है. हमने एक तरफ कहा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. फिर हम एक को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि आई एम नॉट लाइकिंग, आई थिंक शी इज नॉट लाइकिंग कि जमीन आसमान का फर्क क्यों है.
0: सो यू आर ट्राइंग टू मेक बोथ ऑफ देम द सेम.
1: दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज.
0: कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये. एंड ये रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि ये कितना डैमेज कर रहे होंगे वो छोटे बच्चे को.
1: एक्चुअली ये हम जिंदगी में अगर देखें तो ये अनजाने अनचाहे कितनी बार
0: बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा डीप फैक्टर है. आज मेजोरिटी हम लोग जो लो, ये जो लो फीलिंग से गुजरते हैं, जिसमें हमारा अंदर का ये जो है बहुत खाली है, इट्स बिकॉज ऑफ द वे वी वर ब्रॉट अप. हमारे को बचपन से या पीयर प्रेशर में जो कुछ बोला गया था वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है. और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कंपेरिजन. या तो पेरेंट्स हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, या खुद ही हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं. सेल्फ एस्टीम, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एट एनी पॉइंट. तो नाउ अगर ये दो बहनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अगर वो बहन अपने बारे में तभी अच्छा फील करेगी जब वो उस जैसी बन जाएगी. तब तक वो फील करेगी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं. मैं ठीक तब फील करूंगी जब मैं उस जैसा बन जाऊंगी. विच विल नेवर हैपन.
1: बिकॉज शी इज डिफरेंट, शी मस्ट बी डिफरेंट.
0: द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ईच वन इज यूनिक. If each one is beautiful, but each one is unique, each one is different. इस दुनिया की सुंदरता ये है कि हम सब अलग हैं. और हम उस सुंदरता जो भिन्नता में है हम उसको खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, हम अपने एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए.
1: सिस्टर शिवानी, यहाँ डैमेज की बात आप कर रहे हैं. ये हमने कहा कि

0: एक्सेप्ट पेरेंट्स को भी ये मानना कि दोनों अलग हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस पे तो लेके जा रहे हैं कि आप जैसा बनो उस जैसा बनो, वो है नहीं बेसिकली वैसे। लेकिन एक स्टेज, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जो इंस्पिरेशन बनाई गई है उस तरह वो बन जाते हैं कुछ कुछ हद तक, लेकिन उनका बेसिक डैमेज कहाँ हुआ?
1: हाँ, लेकिन वो बाह्य रूप से, जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को फोर्स करके कुछ वो बना देते हैं जो वो पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे से जाके बात कीजिए, आज नहीं तो 10 साल के बाद, एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा कहेगा मैं ये नहीं बनना चाहता था एज अ रोल, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या इवन एज अ पर्सन, एंड यू नो एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी वो बन जाएगा कि वो बनना चाहता था कुछ और या वो था ही कुछ और, लेकिन हमने उसको फोर्सफुली कुछ और बनाने की कोशिश की। सबसे डैमेजिंग होता है ये कंपैरिजन और इमिटेशन, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह बोलना है, मुझे इनकी तरह चलना है, आई हैव टू कैरी माई सेल्फ लाइक दिस पर्सन, दिस इज वेरी डैमेजिंग। एक्सेप्ट कि हर एक हम यूनिक है, वो डिफरेंट है। अब अगर मैं आपके जैसे बनने की कोशिश करूंगी ना मैं आपकी तरह बन जाऊंगी और ना मैं जो थी वो रह जाऊंगी, आई एम मिडवे, तो वो मिडवे प्रोसेस होने के कारण पर्सनालिटी इज एब्सोल्युटली डैमेज्ड। मैं ना वो बनी ना वो रही जो मैं एक्चुअली थी।
0: आई थिंक समवे पेरेंट्स आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट
1: कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वो उसकी विशेषता है क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर विशेषता होगी। अब ये हो सकता है कि मुझे जैसे एक एक्सट्रोवर्ट है एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों के अंदर एक विशेषता है। अब अगर वो पेरेंट को वो एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी ज्यादा पसंद आ रही है, आई ट्राई टू पुश द चाइल्ड टू बिकमिंग लाइक दैट, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल,
0: यस द वे शी इज ब्यूटिफुल,
1: वेरी ब्यूटिफुल, एंड उसके उसकी नेचर को देखते हुए उसके अंदर जो विशेषताएं डेवलप हो सकती हैं कोई स्किल्स, वो इंट्रोवर्ट है तो शायद वो पब्लिक स्पीकिंग डिबेट या जो भी पार्टीज इस तरह की चीज में हिस्सा नहीं ले सकती, वो कोई और चीज में हिस्सा,
0: पेंटिंग कर सकती है, वो कुछ और परफॉर्म कर सकती है, राइट
1: सिंगिंग में जा सकती है, राइटिंग में जा
0: सकती है, वो कुछ भी कर सकती है,
1: बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं वो तो बन नहीं सकेगी, दैट्स फॉर श्योर,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हम उसके भी टैलेंट को और उसकी भी विशेषता को सपोर्ट।
0: और कहीं ना कहीं अगर ये जब मैं सोच पा रही हूँ कि ये देखा बहुत गया कि अगर ये एक ही स्कूल में हुई और अगर तो टीचर्स जो हैं वो भी कंपेयर करते हैं
1: क्योंकि एक क्लास में गुजरेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे
0: कि अपनी बड़ी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है, तो ये पूरा जो पूरा क्योंकि अगली मेल जो है वो मैं यही ले रही हूँ पीयर प्रेशर की। एक निशांत है, दिल्ली से ही है और 9th क्लास के स्टूडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी चैट नहीं करूंगा और इंटरनेट पे मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मेरे को बहुत आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय कहा जाता है मुझे, मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑर्कुट पे चैट करते हैं, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन एक तरफ मम्मी मुझे लगता है कि मम्मी ने मुझे जो है मुझसे प्रॉमिस लिया हुआ है तो कैसे मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ूं, और दूसरी बात ये कि अगर मैं नहीं जाता हूं चैट पे तो मुझे सारे लोग हंसते हैं, सारे क्लासमेट्स जो हैं वो ऐसा करते हैं कि आई फील वेरी लो, आई फील वेरी लो, मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दूं, लेकिन मन नहीं करता, सो इट्स लाइक अगेन अ पीयर प्रेशर, एक्चुअली
1: सही बात है, पीयर प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन,
0: हाँ कि मैं जो है वो लो हूँ, लो सेल्फ एस्टीम में चला है,
1: जो लो सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ये फंडामेंटल होगा, बहुत ज्यादा इस बात पर आधारित है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
0: इमिटेशन भी करते हैं, नकल करते
1: हैं, इमिटेशन तो एक हो गया, जैसे हमने कहा कॉम्पिटिशन, इमिटेशन, कंपेरिजन, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, ये फिर भी माइल्ड है, लेकिन सारे जीवन हम इस में जरूर चलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोग अप्रूव करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद है, तो अगर लोगों को पसंद है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं ठीक हूँ, इट डजेंट मैटर इफ इट्स ऑल रॉन्ग, यू नो इट्स लाइक आजकल तो देर इज सो मच ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट,
0: एक्चुअली बिकॉज दिस चाइल्ड ऑल्सो इज सेइंग कि मुझे पता है कि गलत है,
1: क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं तो मुझे भी वो करना चाहिए टू गेट देयर रिस्पेक्ट, यू सी इट्स लाइक सपोज ड्रिंकिंग स्मोकिंग, एक टाइम पे वी वुड से इट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, लेकिन आज क्योंकि मेजोरिटी कर रहे हैं
0: इसे सोशल ड्रिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी, सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते
1: और अगर नहीं करते हो आप तो यू आर नॉट नॉर्मल, तो इसलिए मेजोरिटी में हम में से वो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने नहीं किया तो लोग कहेंगे अच्छा तुम तो बहुत संत बन गए हो, ये जो रिमार्क हमें दूसरे से मिलेगा, मतलब नहीं ड्रिंक करना मेरी विशेष विशेषता थी, लेकिन दूसरे के कमेंट के कारण मैं अपनी विशेषता छोड़ने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, आप तो बहुत सीधे हो, ये तो बहुत ढोंग है, आप संत हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, यू नो वट एवर काइंड ऑफ कमेंट्स दैट कम फ्रॉम पीपल। सिर्फ उस चीज को नहीं सुनने के लिए और वो उनके जैसा उनकी अप्रूवल लेने के लिए हम करना शुरू कर देंगे। इवैल्यूएट आपके लिए, नॉट इवन इन अ ब्रॉड सेंस कि सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज वी आर नोबडी टू डिसाइड कि सही क्या है गलत क्या है। मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है
0: इंडिविजुअल लेवल पे,
1: इंडिविजुअल, जैसे इस बच्चे के लिए अगर उसने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि चैट नहीं करूं, फ्रेंड्स चाहते हैं कि करूं, लीव बोथ असाइड फॉर वन मिनट, ठीक है, तो नॉट दिस एंड नॉट दिस, जस्ट लीव बोथ असाइड, आस्क योर सेल्फ What is good for me? क्या मैं सिर्फ चैट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं? क्या मैं इसलिए नहीं कर रहा सिर्फ क्योंकि मम्मी ने कहा है? तो दोनों वेज आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी,
0: यू नो, क्योंकि दोनों में ही मैं गवर्न किसी और से हो रहा हूँ
1: एंड वी डोंट लाइक दैट। तो मुझे अपने आप से दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा ही सोच रही होंगे तो वो किस लिए कह रही है? थिंक अबाउट इट, बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट है, मैं कुछ और कर सकता था उतनी देर में, कोई बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं निकल रही है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा ये ना होता मैं कोई जाकर एक्चुअली लोगों से बात करूं, तो मैं एनर्जी से बात करने की बजाय
0: एक मशीन से
1: बात कर रहा हूँ। क्यों? व्हाई एम आई मूविंग अवे फ्रॉम एनर्जी? इट विल अफेक्ट माई पर्सनैलिटी। तो ये सब चीजें अगर मैं एनालाइज करूं, देन आई टेक अ डिसीजन, आई विल नॉट चैट। एंड फिर जब वो मेरा अपना डिसीजन होगा सोच के रियली, फिर मुझे ये नहीं फर्क पड़ेगा अगर द होल वर्ल्ड फॉरगेट जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, अगर सारी दुनिया एक तरफ है और कहती है कि चैट करना चाहिए, लेकिन मैंने फील किया मेरे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
0: तो फाइनली एक्चुअली इफ वी लुक एट इट, वी कम डाउन टू दिस सोल्यूशन, दिस यू नो दिस रिजल्ट दैट सेल्फ एस्टीम एक्चुअली मेजरली डिपेंड्स अपॉन आर अगेन इनर स्टेबिलिटी,
1: राइट?
0: मैं डिसीजन लेने की जो पावर है मुझ में,
1: सेल्फ एस्टीम इज कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल। अभी जो हमने दो तीन बातें ली, हमारी हाउ आई फील इट्स बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, तो वो भी टेम्पररी है, मोटे पतले वट एवर, काले गोरे वट एवर। सेल्फ एस्टीम सेकेंड वॉज बेस्ड ऑन How I want to be, कि दूसरे की तरह हम बनना चाहते हैं, then I will feel good. And third, self-esteem was based on लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मतलब सोचने की बात है कि सारा दिन में या एक जीवन में हम कम से कम 1000 लोगों से मिलते होंगे, कम से कम। अब 1000 लोगों का ओपिनियन तो मेरे बारे में अलग अलग होगा ना। अच्छा, हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को भी ले लें, लेकिन उनका उनकी सोच के अनुसार, उनकी परसेप्शन के अनुसार उनका मेरे बारे में ओपिनियन होगा। और वो एक्चुअली ओपिनियन क्या है मैं उनके माइंड में घुस के चेक भी नहीं कर सकता। और आपका ओपिनियन मेरे बारे में क्या है, यू आर अलाउड टू हैव दैट ओपिनियन। आई ऑल्सो के नॉट से आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते
0: हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है वो मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट है,
1: right.
0: वो मेरे अपने इनर सेल्फ का एक पोर्ट्रेट है।
1: आई कुड बी वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी, लेकिन अगर आपने काला रंग का चश्मा पहना है तो आपको ये व्हाइट नहीं दिखने वाली है। और अगर अब आप मुझे आकर कहो कि आपने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है एंड आई बिलीव यू,
0: then I am wrong actually.
1: Absolutely.
0: Because I have to understand that I am the white.
1: मुझे तो याद रहना चाहिए ना, मुझे तो पता होना चाहिए कि आई एम वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी।
0: अगेन यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
1: अपने आप की अगर पहचान होगी, अपनी रिस्पेक्ट होगी, तो फिर दूसरे का राय आप सुनेंगे, लेकिन हमेशा दूसरों के ओपिनियन की तरह बनने की कोशिश नहीं करते रहे।
0: बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी की, कहीं ना कहीं ये तीन बातें जो सामने आई कि हमारी जो लो फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं यू नो लाइक वी फील की पिट में ना, स्टमक के पिट में ना, वी गोइंग डाउन, सो दैट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज हमने उन्हें एक्सटर्नलाइज कर दिया है सभी फैक्टर्स को, तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस अगेन कम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सेल्फ एस्टीम उस पर बहुत डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच। देखा कितनी आसानी से हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट वापस लौट सकती है, जो हम अकेलेपन का, खालीपन का, हॉलोनेस की फीलिंग के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर खुद को जाने, खुद को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये हॉलोनेस डिपेंड करती है, उन्हें छोड़ दें, खुद से बात कर लें, तो शायद हम हंसते खेलते जिंदगी को गुजार पाएंगे। आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9

7373666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। अगली कड़ी में अपने बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स. जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं. लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं. आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा. वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट. पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है. कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ।

खुले बाहर चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

लोक कहें मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो बिखरे विद ब्रह्मा कुमारी।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक्सेप्टेंस के बाद पर मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून।
2: पिछली बार जो लाइन थी जो आपने सुनाई वो थी एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। एक्सेप्ट एज इफ यू हैव चोजन इट एंड इफ यू डू दैट देन यू विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। मतलब परिस्थिति को पहले एक्सेप्ट करें फिर एक्ट करें, और इतना प्यार से एक्सेप्ट करें जैसे कि आपने खुद वैसा ही चाहा था, दैट यू हैड चोजन इट एंड इफ यू डू दैट यू विल क्रिएट मिरेकल्स। आज ये लाइन कहती है एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। सपोज जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून बड़ी बात आई है, हमें उसको क्रॉस तो करना ही है और हम सब करते हैं फेस करना ही है, उस चैलेंज के पार हमें जाना ही है। वो चैलेंज को क्रॉस करना भी एक जर्नी होती है। वो चैलेंज को क्रॉस करने में कभी कुछ घंटे, कभी कुछ दिन, कभी कुछ साल लगते हैं। कभी कभी वो चैलेंज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। देर आर सम सिचुएशन विच विल नेवर गेट सॉल्व्ड, राइट? सपोज मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो सकता। सपोज मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए या मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूं, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। कभी मेरा रिश्ता कोई टूट जाए जो अब कभी नहीं जुड़ सकता, कोई मुझसे अलग हो जाए,
1: कोई मर जाए,
2: हाँ, तो वापस कभी नहीं आ सकता। सो देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जिनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं है आगे। उसका कोई ये नहीं, हम वेटिंग पीरियड नहीं है कि इसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस है, बाकी मेजोरिटी सिचुएशंस आज नहीं तो कल ठीक हो जानी है, लेकिन पीरियड कई बार लंबा चल सकता है बीच में। बट इट सेज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग The consequence of the misfortune means जो बात आई है हमारे जीवन में, misfortune जिसको कहा, मतलब कुछ हादसा, कोई ट्रेजेडी, कोई बड़ी बात, वो misfortune हमारे जीवन पर कुछ असर डालेगी, वो तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में। उस परिवर्तन को फेस करने के लिए, उस परिवर्तन में स्मूथली क्रॉस करने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है। क्योंकि ज्यादातर जब भी कोई बात आती है तो हमारा मन प्रश्नों में चला जाता है।
1: क्यों?
2: क्वेश्चंस।
1: किस लिए? कैसे हुआ?
2: किसकी वजह से हुआ?
1: ऐसा मैंने क्या कर दिया?
2: क्वेश्चंस।
1: दूसरों को क्यों नहीं हुआ? मुझे क्यों हुआ?
2: क्वेश्चंस, जिसके लिए परमात्मा हमें कहते हैं प्रश्न चित्त। चित्त प्रश्नों से भर जाता है। जब चित्त प्रश्नों से भर जाएगा तो चित्त की स्थिति, मतलब मन की स्थिति,
1: प्रसन्न चित्त नहीं रहती।
2: यस, वेरी ट्रू। लेकिन उसके अंदर की वो जो स्टिलनेस है जहां हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने वाला है, वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहां हलचल हो रही है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। हर बात का जो मन पर असर पड़ता है फिर उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। आज ज्यादातर क्या होता है, बात आती है, बात एक होती है, एक बात आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जीवन में एक बीमारी आती है। अभी रिसेंटली आई मेट समबडी जिनकी एक बीमारी छोटी थी लेकिन उसका इलाज नहीं पता चल रहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस में क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इतने हताश हो गए कि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम को हम नहीं स्टेबिलिटी से अगर क्रॉस कर पाए तो दूसरी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम एक बीमारी थी, वो एक अलग चीज थी, इलाज नहीं मिल रहा था, तो आप यहां से वहां इधर उधर, पर उसमें जो डर क्रिएट हो गया कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका कभी कोई इलाज नहीं होगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, ये जो मन इन सब चीजों में चला गया, डर में चला गया, दर्द में चला गया, भय में चला गया, इनसिक्योरिटी में चला गया, तो उस मन को डिप्रेशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम। कई बार किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है, कई बार किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस नहीं कर पाए तो और प्रॉब्लम साथ में क्रिएट होती है। कई बार जो आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी

0: जीवन में क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर, कि वो कैसे चलेंगे आगे, ये बनेंगे, नहीं बन पाते, वो जो सोचा था कि स्क्रिप्ट ऐसी चलेगी जीवन की, वो नहीं हो पाता, जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वो अपने आप को भी कुछ कर लेते हैं या हताश हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति का इम्पैक्ट एक नहीं रह राज, एक परिस्थिति का इम्पैक्ट और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेस दैट मिसफॉर्च्यून। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ओवरऑल ही हमारे मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये रोज का गुस्सा, ये सब दर्द करके करके वी आर नॉट अवेयर के हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं,
1: लाइक दे कॉल जीरो टॉलरेंस।
0: हाँ, जीरो टॉलरेंस, तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं ना। अब बॉर्डर लाइन की स्थिति कई सालों तक चल सकती है एंड वी विल से इट्स फाइन, आई एम फाइन, माई लाइफ इज ओके, क्योंकि हमने ये बॉर्डर लाइन स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज जो हमें बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने कहा 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन, सीईओ ऑफ अ कंपनी, जो उनके बारे में अखबार में भी आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन लीव्स।
1: पहले महाराष्ट्र, फिर ऑल इंडिया दिया, ऑल इंडिया देखिए सिंगापुर ऐड किया, फिर ऑल एशिया ऐड बना दिया, तो इतना उनके ऊपर।
0: लेकिन तो वो जीवन में क्या हो रहा था, अचीवमेंट्स वर वेरी गुड, लेकिन मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पर आ रही थी, बॉर्डर लाइन पे आ रही थी। तो कोई परिस्थिति आई होगी, कोई बात आई होगी, चाहे वो बिजनेस में होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होगी, जिसका प्रेशर फिर वो मन नहीं ले पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे वैसे ही अपने आप को बहुत संभाल के चल रहा है धीरे धीरे।
1: 99 हथौड़े मारे,
0: तो फिर यस, तो दिस वी हैव टू टेक केयर इज वन, कि हम पहले तो चेक करें कि क्या हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं या हम स्टेबल हैं बातों को फेस करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट ये कि कोई अगर बात आ जाती है जीवन में, उस बात को फेस करें, उस बात से इतना ना प्रभावित हो जाए या उस पर इतना इफेक्ट ना पड़ जाए अपने ऊपर कि उस बात का कॉन्सिक्वेंस और बातें क्रिएट होने लगे। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो पावरफुल, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। अगर आपको बात को फेस करना है, फेस करना है मतलब इट्स ओके, आई है ना, हम इसको क्रॉस करेंगे, ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, दैट बी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल।
1: यूजुअली जो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और नहीं करते, उसको अवॉइड करते, फेस नहीं करते, हम भाग जाते हैं, इवेड करते हैं,
0: मोस्टली हम उस प्रॉब्लम के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं।
1: नहीं, बट उस चीज को फेस भी तो नहीं करना चाहते ना।
0: फेस तो अब करना ही पड़ेगा ना, अगर कोई बात आ गई है।
1: एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ।
0: श्योर।
1: एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून।
0: मतलब बात जो आई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, राइट? सपोज मुझे कोई बीमारी हो जाती है आज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे जीवन में आने वाले हैं, मुझे उसको क्रॉस करना है। जस्ट द अदर डे आई मेट समबडी इन द हॉस्पिटल, जस्ट एक दो घंटा पहले, वो यंग था, 35-40 ईयर्स का। उस भाई को पता चला कि उसको सेकेंड स्टेज कैंसर है। मेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड तो उनकी वाइफ ने एकदम से कहा कि आप इनसे बात करो ना एक मिनट। तो वो भाई कहते हैं मैं नहीं इलाज कराऊंगा, ये अपना ठीक हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसका इलाज। मतलब इलाज क्यों नहीं करना है? कहते ये नहीं हो सकता है मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई एज है क्या? मतलब माइंड उस सिचुएशन को, उस बात को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो आगे चलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करना, ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बीच का हर्डल बन जाता है।
1: जैसे जब मैं एक फिल्म कर रहा था लावारिस 1980s में, इटली में, तो उसमें इस कैरेक्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और ये बिल्कुल पैसे नहीं है इसके पास। तो मैं सोचा था इसको कैसे प्रिपेयर करूं, तो प्रिपेरेशन के लिए मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला क्या होता है जब इंसान का हाथ कट जाता है, एक नहीं दोनों कट गए, तो मतलब

0: was my choice, तो जीवन में miracles create हो जाएंगे.
1: ये नहीं करते ना, इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि I wish I had not listened to my parents.
0: Yes.
1: मैं भी artist बन जाती.
0: Yes.
1: कि जो मैं present situation में हूँ.
0: Yes.
1: It's not good.
0: Yes.
1: I wish I was there.
0: Right. And the soul can carry this pain for a very very long time. Again for one birth or for many many births. हम हमेशा situations में ये चाहते हैं. या सिचुएशन जब कोई हमारे अनुसार नहीं आती तो हम कहते हैं इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, नो दैट्स हाउ आवर वोकैबुलरी गोज, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता तो. लेकिन अगर जैसा है जो आई हमारे सामने बात, अगर हम कहें ऐसा ही होना था, ये ही सही है, अब इसके साथ आगे क्या करना है, अगर वो एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं तो जो बात आई है ना सामने उसमें भी कोई ना कोई कल्याण निकल कर आ जाएगा.
1: मुश्किल है सर आज की एक्सेप्टेंस करना. कितने लोग एक्टर बनते बॉम्बे आते हैं और फेल होके चले जाते हैं. कितने सालों साल उन लोग वो लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, फिल्में देखते हैं.
0: हाँ, लेकिन उसमें नुकसान हुआ ना, उसमें आत्मा के भविष्य में कितना नुकसान हुआ.
1: नहीं, रियल लाइफ में प्रेजेंट में भी जो फिल्म आई वैसे कपड़े पहनेंगे.
0: हाँ, तो रिजेक्टेड है ना, अंदर कितनी आत्मा दुखी रहेगी,
1: बहुत दुखी,
0: असंतुष्ट रहेगी. और असंतुष्ट रहने के कारण अब करियर तो कोई और चूज करेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स. ऐसा तो नहीं है यहाँ फेल हुए, करना तो हमें कुछ है, लेकिन असंतुष्ट होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है उस एटीट्यूड से करेंगे, तो उस फेज को ना एंजॉय करेंगे और ना उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे. और यही अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद मेरा ये नहीं होना था, ये होना था मेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, स्विच ऑफ फ्रॉम दैट वन, फिनिश्ड फ्रॉम दैट वन, ये है एक्सेप्टेंस. तो
1: जो
0: फिर हम
1: जहां हूं जैसे हो, I am supposed to be happy.
0: I'm not supposed to be happy. This is the best for me.
1: So what has जानकारी वाली बात आ गई.
0: Yes, what has happened for me is the best for me.
1: अभी तक तो acceptance करना ही मुश्किल था. अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मुरली में आता है कि जो भी हुआ कल्याणकारी हुआ.
0: आप देखो हर घर में एक गीता सार टंगा होता है. उस पर लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. टंगा हर एक के घर में हुआ है, पढ़ते भी रोज है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती है. उस लाइन का मीनिंग होगा ना कुछ, कि अगर जीवन को उस मंत्र के साथ चलेंगे कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा.
1: अच्छा, इसलिए वो लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें वो कह रहा था If you accept कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने किया है,
0: yes.
1: then

0: इतने सालों में वो लाइन बार बार बार बार बार बार सुन के पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क होता था कि कैसे होगा ऐसे, लेकिन फिर जब भी सीन्स आए हर सीन में ये अनुभव हो गया कि अगर सीन अनप्लेजेंट भी थी ना उस समय, अगर हम स्टेबल रहते थोड़ी देर के बाद, विच कुड बी थोड़े दिन थोड़े साल, ये पता चलता है कि वो सीन एक्चुअली मेरे लिए कल्याणकारी थी। और जब दो चार बार ये अनुभव हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पक्का हो गया है कि ड्रामा में ये सीन भी मेरे लिए कल्याणकारी ही है। एवरी सीन इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड बेनिफिशियल। एक्यूरेट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू माई कर्म, तो वो एक्यूरेट है, गलत तो वो हो ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। कई बार कोई सीन अगर बाह्य रूप से बेनिफिशियल नहीं लगती कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आत्मा स्टेबिलिटी से उसको क्रॉस करती हूँ तो उसमें ये कल्याण निकल कर आता है कि आई कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हमारी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति के आने की वजह से बढ़ जाती है। हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये पावर है, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये क्वालिटी है।
1: हर्डल्स के ऊपर जंप करना सिखाते हैं ना,
0: तो हर्डल जब तक आएगा नहीं तो हमारी स्किल, हमारा पावर ये बढ़ेगी कैसे। तो अगर और कोई कल्याण नहीं निकला, अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखा उस सिचुएशन में, ये कल्याण तो निश्चित है
1: स्ट्रेंथ
0: कि वी विल कम आउट पावरफुल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कहते ना ये जीवन का अनुभव मुझे सिखा कर गया है, मुझे स्ट्रांग बना कर गया, कहते हैं ना। लेकिन स्ट्रांग बनकर कौन निकलेगा उससे बाहर? कोई व्यक्ति सिचुएशन से वीक होकर भी बाहर निकल सकता है, लेकिन स्ट्रांग होकर तब निकलेंगे उस सिचुएशन से अगर हमारा ये पक्का रहे कि ड्रामा की ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। इवन अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर मेरी कोई चीज छूट रही है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है, अगर उस समय स्थिति को अच्छा रखेंगे ना तो हमेशा ये याद रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए छूटी थी, ये चीज इसलिए छूटी थी क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा बेटर मेरे लिए बेनिफिशियल।
1: Isn't this the thought of a loser?
0: छूट गई है, what will you do? वो चीज छूट गई है। A loser is the one who will fail after that, जब वो चीज छूट गई। And a winner is the one जो एक चीज छूटेगी तो वो दूसरी चीज के लिए रेडी है, वो रेडी है दूसरे को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है, दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, दूसरे चैलेंज को क्रॉस करने के लिए रेडी है। लेकिन लूजर तो वो जिसकी एक चीज छूटी और वो हताश होकर फिर ट्राई ही नहीं कर पाया। आज कोई बीमारी भी अगर होती है तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपकी विल पावर से आप इसको क्रॉस कर लेंगे, आप बस पॉजिटिव रहना। क्यों हर एक डॉक्टर ये कह रहा है आज सबको, आप बस पॉजिटिव रहना? क्योंकि जब बीमारी आती है तो मन पहले कहता है मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका ये सारी चीजें हमारी उस बीमारी को एग्रेवेट कर देंगी और कुछ नहीं तो हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर देंगे। एक भाई आते हैं हमारे पास सेंटर पर, उन्होंने जीवन का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया। व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 35 एंड 2-3 साल हुए थे उनको राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको टर्मिनल फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट वॉज, एडमिट हुए, कीमोथेरेपी चल रही है, इलाज चल रहा है। कहते मेरा माइंड स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मुझे ये क्या हुआ है, मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है, सात्विक जीवन है, मेडिटेशन में रोज करता हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ? मतलब इट वॉज अ हाइट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, कर ही नहीं पा रहा था। कहते हैं वो मेडिसिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर कर जा रहे हैं, मेरी तबीयत डे बाय डे और खराब होती जा रही है और खराब होती जा रही है। ही सेड द डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतनी दवाई का। माय माइंड वाज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट ओनली, वो ले ही नहीं रहा था उस चीज को। तो माइंड ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। और एक दिन वो कहते हैं मैं रात को ऐसे जागा था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खाना नहीं खाता था, तो मुझे ऐसे ही जैसे परमात्मा का एक विजन और एक आवाज, जैसे एक टचिंग हुई, तो परमात्मा

0: कहा कि ये सीन तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि इससे तुमने अपने जीवन में और लाखों के जीवन में हीलिंग करनी है. स्ट्रॉन्ग लाइक दैट टचिंग. कहता है दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड. एंड उस दिन से वो ही दवाई जो कल तक असर नहीं कर रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, नेक्स्ट डे से वो ही दवाई असर करने लग गई. आज तो खैर वो आत्मा अनेक अनेक आत्माओं की वर्ल्ड ट्रैवल करके मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में कैसे हेल्प करती है, वो उसका रोल बन गया है इस जीवन के अंदर. लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कि जब तक मन क्वेश्चंस में रहेगा, न मन हील होगा न शरीर हील होगा. आई हैव चोजन दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस नाउ. व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट. सोल्यूशन पर फोकस करें तो वो कॉन्सिक्वेंस जो था उसका फर्स्ट स्टेप जो ओवरकम करना था वो हमारा हो जाता है फिर.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Most situations will have an effect on our normal functioning of life, and we will need to adapt ourselves to that change. The first step to do that is to accept the situations, which means no questions. Why me? Why not others? Who is to blame? What have I done to deserve this? A questioning mind creates fear and anxiety, which will further impact our mental health, physical health, and relationships. Acceptance silences the questioning mind. We start to see solutions and new possibilities in the stillness of the mind. Everything happening to us is accurate and beneficial. It is accurate because it is according to our karmic patterns. There will definitely be benefit in it, which will get revealed later. And even if there is no outward benefit, we have come out of the situation emotionally empowered is the inner benefit.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोर सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

अहो ऐकलं का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन

0: Vedana. It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy, life hai. Ye nikal jaye to life khatam ho jati hai.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे।
1: नमस्कार, अपन एक तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता,

0: But the thought that I create, now I have a laptop. You know, ये thought जो create कर ली, ये thought वो positive energy को create कर देता है. तो सबसे पहली realization ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस feeling को नहीं create कर रहा है, मेरी अपनी thoughts, क्योंकि हमने chain में देखा कि thought gives rise to feeling, nothing else. कोई भी और चीज वो feeling नहीं create कर सकती है. तो now it's in my hand कि laptop लाने के बाद मैं उस अच्छी feeling को create करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मित्र मेरे मिल जा जल्दी दुनिया के सागर।

دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरस की एक रंगी शाम। देखो देखो देखो देखो देखो पैरी। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरस की एक रंगी शाम। देखो

0: Excuse me, ladies.
1: Maaf, dadıma.
2: Madri?

रंग के हुनर में मिल में अकेले तेरी बाजार सर में कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना यमला पगला दीवाना।

छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना, मैं यमुना पगला दीवाना।

न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली।

0: देखो कितने पैसे बापी, अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी, मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कभी राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, पैसे अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ, नोन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
1: अच्छा,
0: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
1: अच्छा,
0: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किस्से सर छोड़ो धन

0: दाएं में हेमा
1: मालिनी,
0: बाएं में वीना
1: समान,
0: सामने देखा पीछे तो देखा, दाएं में हेमा बाएं में वीना, सामने देखा पीछे तो देखा।
1: क्या हुआ?
0: रखना खड़ी थी हाथ में, खड़ी थी देखते देखते मैं हाथ

और नजर क्यों ये मुझे पहचाना ओ हो नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला।

दिल मिलाने के दिन, नहीं दूर जाने के दिन, ये है पास आने के दिन। देखो ना जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

आती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं, पास अगर तू आ जाए।

0: गाड़ी को भी यही पंचर हो रहा था।
1: हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह, अरे वाह।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

जाता है प्यार। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, वो जानते हो।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।